स्वागत हो रेडियो मर्संगदी 95 मेगाहर्ज र इन्टरनेट अनलाइन रेडियो मर्संगदी .org नारा 8 बजे खबर तमुके मर्संगदी फेतेरी गा खुशी माया तमुशोला तेवा मो ऐश्वरी क्रब फेतेरी

तरङ्गेदु ताए फेते मर्सङदी नाचपालिका चाहिँ नायुबा समयरी तलखापा विपदा दिएर प्राकृतिक जोखिम न्यूनीकरण लभा लागि तयारी शुरू लाई नाचपालिकाले विपद पूर्व तयारी र न्यूनीकरण लभै लागि सोमबार सर्वपक्षीय संयुक्त बैठक टीम पालिका स्तरीय विपद व्यवस्थापन समितिर्वा अध्यक्ष दिएर नाचपालिकाहरूको अध्यक्ष अर्जुन तमैना अध्यक्षतले नाचपालिका कार्यवाही टीम बैठक र नाचपालिकाहरूको जनप्रतिनिधिमै कर्मचारी भितलो मर्सङदी हाइड्रो पावर कम्पनी सरकार समिति दिव्यज्योति हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड दिएर सुरक्षा निकाय निधिमै सहभागिता म बैठकले नायुबा बेलारी तलखा खलखाबा टुई भलमय खलखाबा प्राकृतिक विपद पारे भए सम्भावित क्षति न्यूनीकरण लगा उपाय बारे गम्भीर विस्तृत छलफल लाई म लम्जुगरी ताराखाबा जेठैना 14 गते 13 15 गते विविध कार्यक्रम लैमरे गणतन्त्र दिवस मनाइ पतै म जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवस मनाइ भ सम्बन्धी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयजी चितिपिमी भ लिसु लम्जुगरे 14 13 15 गते विभिन्न कार्यक्रम लैमरे गणतन्त्र दिवस मनाइ भ निर्णय लैम दिवस मनाइ भ सम्बन्धी जिल्ला समन्वय समिति र प्रमुख पूर्ण बहादुर तमैना संयोजक तरी जिल्ला स्तरीय समिति गठन लबादी लल तलो विषा चु समिति जी सोमबार सरकार वालामेति छलफल लैमरी कार्यक्रम लबा तय लैम चिसा प्रमुख तमैना अध्यक्षतरी तबा बैठकरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी नासथेमे अधिकारी मय विशेष नगरपालिका उपप्रमुख सुरक्षा निकाय प्रमुख विभिन्न कार्यालय दिएर संस्था प्रमुख दिएर प्रतिनिधिमय संचारकर्मीमय उपस्थिति मूल समितिजी तयलब कार्यक्रम अनुसार तारखा 14 गते 13 15 गते जिल्लाइरी तायोक सरकारी निकाय दिएर प्रतिष्ठान दिएर संस्थामैरी राष्ट्रिय झण्डा थेवा कार्यालय निरारी दीपावली लबा कार्यक्रम तयलैम विषय गणतन्त्र दिवस अवसरले रेडियोरी परिसंवाद दिएर पत्र पत्रिका र गणतन्त्र सम्बन्धी सन्देश सचेतनामूलक सूचना प्रकाशन दिएर प्रसारण लबा तैम बिरसा नगरपालिकाले पूर्णखोप सुनिश्चित दिएर दिगोपना घोषणा पालिका घोषणा लैब नगरपालिका नोरी खोप युही खाँबा कोलमै तायो खोप यो आयो सुनिश्चित लबलिसु पालिकाले पूर्ण खोप सुनिश्चित दिएर दिगोपना घोषणा लैम बेसा नगरपालिका खोप समन्वय समिति अध्यक्ष दिएर नगर प्रमुख गुमन सिंह आर्यलैना अध्यक्षतले टिप बैठक जी सोमबार नगरपालिकाले पूर्ण खोप सुनिश्चितता पालिका घोषणा लैब नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मनोज सिंह बोराइन अनुसार बेसा नगरपालिका नोरी मुभा 11 ओडारी पूर्ण खोप सुनिश्चित दिएर घोषणा लबादी बालयो नगरपालिकाले खोप सुनिश्चित घोषणा समेत लैम लम्जुङ जिल्लाका प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रतिनिधि सभा सदस्यले निर्वाचित अब सांसद धर्मराज केसीजी गृह जिल्लाधिकारी खबर लिसु सर्वोदय सेवासम थापानाथजी अवलोकन समेत लैम अवलोकन क्रमरी सांसद केसीसी आश्रम नोर्फ संचालन लै खावा ज्येष्ठ नागरिक ग्राम आरोग्य ग्राम आध्यात्मिक बगैंचा योग दिएर ध्यान हल करेसाबारी दिएर गौशाला लगायत संरचना र निरीक्षण समेत लैम आश्रम रीति खावा बो आमा मैले भेटघाट लबलिसु फलफूल समेत चुवा संस्थाजी सामाजिक सेवा प्राकृतिक संरक्षण दिएर सांस्कृतिक जगेर्न पुरेवा योगदान बारे जानकारी समेत किरो छु अवसरले सर्वोदय सेवा आश्रमका अध्यक्ष कृष्णराज ओलियाजी सस्तैना भावी योजना समिति माग पत्र दिएर मायन चिन्ह समेत सांसद दे हस्तान्तरण लडो कार्यक्रमले आश्रमका उपाध्यक्ष सुखदेव रिसाल कोषाध्यक्ष भूमि नन्दन तिमिल सिन्हा प्रचार प्रसार संयोजक लक्ष्मी प्रसाद मिश्र योग दिएर प्राकृतिक चिकित्सा संयोजक ऋषिराम गेवाली लगायत नासिथेमे उपस्थिति मूल मर्सङदी नाचपालिकाले आर्थिक वर्ष 82-83 वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम नोरी सञ्चालन तैखबा 30 दिने कम्प्युटर शिक्षा तालिम होइन अभिमुखीकरण कार्यक्रम छिम नाचपालिका नोरी नाचतेमी बासुलाई खबा शिक्षण संस्था त क्या तह भन मात्र यो कक्ष 12 पास लबा विद्यार्थीमै दे लक्षित लैमरी तालिम सञ्चालन लाल भैब अभिमुखीकरण कार्यक्रम नाचपालिका अध्यक्ष अर्जुन तमैना अध्यक्ष तरी तलो कार्यक्रम मरी पैमरी अध्यक्ष तमुजी फ्रेसिमेजे समय अनुसार भए प्रविधि मैत्री दक्षतिर आत्मनिर्भर बने भए लागि कम्प्युटर शिक्षा लिए आवश्यक मोबाइल बिब थिए तालिम त क्या विद्यार्थीमेजी आधारभूत कम्प्युटर यो ज्ञान यो बधे बालयो व्यावहारिक सिप भएनी यो खाबा विश्वास व्यक्त लैम कम्प्युटर सिट छैन महत्व छुइन सिर्जना दिएर अवसर दिएर भविष्य होइन सम्भावना बारेरी तायो विद्यार्थी मैले विस्तृत जानकारी समेत पिलो अभिमुखीकरण कार्यक्रम सहभागी तथा विद्यार्थी मैले तालिम फेरि उत्साह दिएर सकारात्मक ऊर्जा समेत व्यक्त लालो
मर्सदी नासापालिका दे भिनी पूर्णख सुनिश्चित दिएर दिगो पना घोषणा लैमो नासापालिका नोर्वे 16 महिना तक उन्साठी महिनासम्म बे तायो कोलमेजी राष्ट्रिय खोप तालिका बमोजिम बै 15 महिना नोर्वे योन परिवार तायो खोप यो खाबा खाबा बारे सुनिश्चित लिसु पूर्ण खोप दिगो कायम मुभा आधारले नासापालिका घोषणा लैब सोमबार मर्सदी नासापालिका स्वास्थ्य शाखा आयोजना कार्यक्रम अग तार खबर दिनारी कोलमय देख बिनी खोपदगिया वंचित अलावा बिमारी प्रतिबद्धता समेत लै म कार्यक्रम पैमरी पालिका स्तरीय खोप समन्वय समिति अध्यक्ष दिएर नासापालिका अध्यक्ष अर्जुन तमुजी पूर्ण खोप सुनिश्चितता कोलमय स्वास्थ्य दिएर सुरक्षा भविष्य दिए प्रत्यक्ष जोड़ दिव विषय तब तैमरी चुदे दिगो पना लबै लागि तायो साधा जिम्मेवारी मुभा बी मिजी कोलमय नोर्बे तायो कोलमय दे खोप सेवादगिया वंचित अथवा आलावा प्रतिबद्धता समेत व्यक्त लैमरे तारखबा दिनारी पूर्ण खोप दिगो पनादे निरन्तरता पिबा समेत बिमो नासापालिका नोरे भर्खर फीदेखि 15 महिनासम्म 173 जना दिएर 16 महिनादेखि 59 महिनासम्म 536 जना कोलमामे मुभा स्वास्थ्य शाखा प्रमुख तरूण तमुजी बिमो थिजी सहजीकरण लभा कार्यक्रमले अहिबार रोशन तमुजी खोप सम्बन्धी प्रतिवेदन समेत प्रस्तुत गर्नु मर्संगी फेटे तो खोबे लगे छो गए फेटे छे भाई उइसौ क्राबे फेटे फेरी देखे।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक एक बजे को छ।
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ.
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी.
3: तपाईँ रेडियो मर्सेङ्गी एफएम

0: कस्तो दामी है दाजु बहिनी है वाव
1: तर तिमी टेन्सन नलि म छु नि
0: अब त मै हो यो लगेर म इन्स्टाग्राममा हाल्छु
1: जाऊ
0: जाऊ है

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: मर्सेंग एफएम 95 मेगाहर्ज 95 मेगाहर्ज

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी